उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती। और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

0: एक कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप, मेरी लड़ी है।

0: डॉक्टर जी प्लीज एक बात सुनती जाइए, बस एक बात डॉक्टर साहब।
1: कहिए।
0: वो जो आपने मेरे लिए दुआ की थी ना, जरूर सच्चे दिल से की होगी। भगवान ने सुन ली है और मुझे हो गया है।
1: क्या हो गया है?
0: मुझे प्यार हो गया है।
1: अच्छा, मुबारक हो।
0: लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं किससे।
1: अरे हाँ, ये तो मैं पूछने भूल गई, किससे?
0: जी वो,
1: बोली बोली, कौन है वो खुशनसीब?
0: जी वो खुशनसीब आप ही हैं।
1: ओह थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं।
0: सुनिए, ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है।
2: ओए चांद जी।

मुंडन संस्कार होने वाले हैं उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉन ट्यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
1: नैनों में

सो गया ये जहां सो गया आसमां दस्तम फन जुबीन नौटियाल एंड नितेश मुकेश फिल्म का नाम रहा बाईपास रोड उजाला रेडियो है ये सुनने वालों जहां भी हो आप वाचो कर दू बेंट गनीत लेकर फन दिस हेलक डग गनीत लेकर फन द हेलक गाना इट इज मेरा और आपका साथ एंड दैट बिटेक इट लेकर गनीत फन द हेलक गफारीद गाना

फिल्म का नाम है पल पल दिल के पास में तीन द होफ्ट रोल करण देओल इट इज सैन डेब्यूट फिल्म एंड डेज फिल्म इज गरेगिसेर्ड डोर सैन फादर एंड इट इज नीमन मिंदर दन सनी देओल और फिल्म का नाम रहा दुस पल पल दिल के पास एंड इट वाज द टाइटल ट्रैक गाना सिर्फ खूबसूरत गाना आपके लिए पेश है Heerlijke gevarieerd Ghana on the one and only Dunia Ka Mashur Hindustani Super Radio. Oh Bobby, Amit Jairam Kesat, ik zou zeggen geniet er lekker van. Ontspan lekker als je op dit moment lekker aan het werken bent, aan het koken bent. Of gewoon even lekker op de bank aan het hangen bent. Zet je radio gewoon lekker luid en ontspan en geniet. En ondertussen genieten we gewoon lekker van de stem van Arman Malik uit de film Yes Ali Ashiki. Organica naam he Hawa Banke.

यही गाना हम पेश करेंगे बहुत प्रेम से, तेरे बिन एक पल नहीं जीना, मैंने ये फैसला कर लिया, दीवानी मैं हो गई, दीवाना मैं हो गया। और फिल्म का नाम है इंडियन, एंड ऑन द वोकल्स अलका याग्निक समवेत शान। And in the host role this stage had was Sunny Deol, Silpa Shetty, Rahul Deo en Mukesh Rishi. In het jaar 2001 was dat dus. Altijd leuk om weer liedjes van een tijdje terug te horen die je heel lang niet hebt gehoord. Maar die in die tijd een enorme hit waren. Ja toch, we wisselen af. Jaren 90, periode 2000. En daarna weer een nieuw Bollywood. Filmke naam heet Drive, de stem van Tanish Bakshi. En deze Dhamaka Gana.

कुदरत का करिश्मा एक दूसरे से है मिलना, दुनिया की जरजमी पर किस्मत को है आसमाना, ये प्रेम का जहां है हरगिज न भूल जाना, आपस की मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। हमारे प्यारे सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर का प्रोग्राम जो आप लोग सुनने को जा रहे हैं उजाला रेडियो का, हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहजुल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। करीबन 10 मिनट व्यतीत हो चुकल है 9:03 ओवर 9। खुद मोरखा लमाओ, इट इज फ्राइडे 25 सितंबर 2026।

सुनते होंगे, सुनते ही जाइए दिन में 12 बजे तक। जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी का सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं सुभाष शिव गोविंद खुद मोरखलमाओ, वेलकम। अगर हमारे प्यारे सुनने वालों, अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का बस आपका फोन का नंबर है 020-363-0808 पर। उजाला रेडियो का दफ्तर आज सुबह में 10 बजे से भी खोले जाएंगे, और मानदाग तो मैं सातरख पन 3 मार्च और 3 और मिनख। और यहाँ का फोन का नंबर है 020-409-0807 पर आप लोग तार कर सके हैं। उजाला रेडियो का व्हाट्सएप का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिलेगा। चलिए हमारे प्यारे सुनने वालों, सुबह का प्रोग्राम को आरंभ करते एक सुंदर सा लक्ष्मी चालीसा से, और आप लोग सुनेंगे इस तरह से।

अवसरों से महालक्ष्मी चालीसा जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने एंड यू आर उजाला रेडियो फ्राइडे शुक्रवार का प्रोग्राम

जो शुरू हो गए हैं ता इतना तो लोग से मांग ले पूछे तो लोग से इकर जान गोले बात खाओ फंदा को करना का पकाओ को यार आंच मत अलग फ्राइडे के जब हम का में जब बनाए लो प्रोग्राम तब नतुल लग चाहे जाने की का हो आज वीकेंड तो में का करे कोई का पकाओ कोई का खाओ कोई एना तो लोग का पिए कोई अगर आप चाय या तो कॉफी या तो खेम्बर ते ही बनाए के बैठल हुई है या तो आप ऑन बैच करते होंगे तो स्वादी से ऑन बैच कीजिए चाहे जो ऑन बैच करते हो यही स्मैक का लमाओ एंड यू एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम है और हमारे प्यारे सुनने वालों

और चलिए प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे और देखा जाए आलमेर में और खास करके माइक बुद्धू प्रोग्राम को बैठ करके सुने खुद मोर माइक। और चलिए भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम

प्यार नहीं तो क्या है, और इस तरह से हरिहरन एन साधना सरगम जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे एन उजाला रेडियो का प्रोग्राम, हमारे प्यारे सुनने वालों शुक्रवार का प्रोग्राम है, इट इज फ्राइडे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से गाना जो आप लोग सुनेंगे

फिर से मोहब्बत ना हो और कोई चाहत बोले ना हो, आयुष तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। और इतना मोई घाम निकल बा, इतना मोई वेर बा, इतना बिसाओ बल, चाहे जो ची आप लोग करिए यार, प्यार से दुलार से कर लेना, चाहे ये चाय या तो कॉफी या तो खेम्बर तेई बैठ के पीते हुए तो प्यार से पिए। देखिए सरक ना जाए हमारे बतियन सुन के आई बॉय, आई बॉय, यू आर उजाला रेडियो, तेरे बिन अधूरा है यार।

इतना मोई प्यार भरा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो तुल बिरुख शहर में, जहां पर सुनीता भी प्रोग्राम को बरकर सुने खुद मूर्ख, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

रे यार तेरे नाम की धड़कन कितना मोई विशाल आई नब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए संद्रा भी प्यार के साथ प्रोग्राम को सुने तो प्यार के साथ गाना पेश है तुझसे इश्क हुआ आई बॉय एम्पा जी क्या बात है यार।

खूबसूरत लगता है जब किसी को पाने से ज्यादा उसके साथ हर पल को जीने की ख्वाहिश होने

न दिल बेखबर हुआ। यावेल आई बॉय एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम देखा जाए भी आनंद जग्गू भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने ना बैठ कर सुने अपन ओ तो वह में बैठ करके सुने यावेल। तो चलिए भाई जी ये गाना तुम्हारे नाम उजाला रेडियो का साथ प्यार के साथ ओ तो में बैठ करके सुने चाहे जहां जात हो ये हमें साथ ले जाइए यार।

तुम्हारी कसम तुम मुझे बहुत याद आए। और से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, कुमार शानू एंड कविता कृष्ण मूर्ति जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। तो और मेरे शहर में देखिए माइक बुद्धू जी भी प्रोग्राम को बढ़कर सुने, तो पास जी ये गाना तुम्हारे नाम।

अरे यार चाहे मेरा जान न जाए एन चाहे मेरा दिल जाए, अवसर से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। और हमारे प्यारे सुनने वालों, नाद रिक्लाम नाद ब्रेक यार, फिर हम आप लोग से जरूर से मिलेंगे। बस प्रोग्राम को आप लोग सुनते ही जाइए। अतस बाई ना तीनेर ठीक है, 10 बजने वाले हैं। नाद ब्रेक नाद रिक्लाम बेनक वित्र यार एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। कितना मोई वेरवा बाहर है, बल बे बाहर ना जाइए।

जना रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर का प्रोग्राम फ्राइडे 25 सितंबर खुद मोरख अलमाओ आप को एक शुभ दिन करीबन 9 मिनट व्यतीत हो चुकल है 10:09 ओवर 3 और आप लोग उजाला रेडियो का प्यार के साथ बैठ करके सुन रहे हैं और प्यार के साथ प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आप सभी के लिए। वेल हम तो लोग से बता चुके हैं कि चुजवाई सेवा कि सबको इस सवेरे सवेरे फुरकू फुरकू सवेरे सवेरे पका ले हैं देखने जी फ्रेश है यार और ये काम पे या वेल तो काम पर जिन कसी तब शुरू करिए या तो तू कलिया ज्यादा खाई बना ले ले फोरफंदा मई सब चुजवाई ऐसे हो गए मजे पकावे है तो लोग मोई से पकाइए और पकाई के मोई से खा लिए। ओके दरहा शहर में भाई रकेश प्रोग्राम को बैठ करके सुने तो इस गाने को मांग किया है बोले चेहरा क्या देखते हो बोले दिल में उतर कर देखो ना कि हमारे दिलवा में का होवे है।

0: आई बो ये चेहरा क्या देखते हो यार, बोले दिल में उतर कर, बोले देखो ना यार, बोले किसने तुम्हें रोका है। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम फैंस पोल्डर शहर में, जहां पर इस वक्त MEGB प्रोग्राम को बैठ करके सुने। तो चलिए MEG ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ।
1: मोहब्बत इंसान को पूरा कर देती है, लेकिन जब वही मोहब्बत अधूरी रह जाए तो सिर्फ रिश्ते नहीं, इंसान भी टूट जाता है। आज भी एक सवाल हर धड़कन से टकराता है, जब आखिर में छोड़ ही देना था तो मेरी रूह में उतर कर अपना बनाया ही क्यों। अब मेरे पास

0: छोड़ देते हैं और फिर एक दिल हमेशा के लिए।
1: वेल, क्या बात है यार, कितना मोई, कितना विशाल गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, 20 मिनट ओवर 10। ए गुडमॉर्निंग अल्लामा जबल इस यू आर उजाला रेडियो। वेल, वीकेंड है।
2: बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए।
1: औरत लोग से बता रहे गोरसिया 15 रहेगा बेबी एर। जबल बेबी एर भाई ग्रोसर के और रेफर लेफर के संभव बनाएगा भाई रकीस। ब्रेन बोन मेट कोल एंड ग्रोसर किप एंड लेफर संभव। जबल रेसिपी फॉर फंडा।

वल दिल तेरा दीवाना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनवलू और युवार उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। तो चलिए मानो भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, अपना सुनु शक लिए गाना को मांग किया है प्यार के साथ।

आई बॉय एहसान तेरा होगा मुझ पर, अवसरों से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए खास करके प्रदीप खेदू प्रोग्राम को बैठ करके सुने, तो भाई प्रदीप ये गाना आपने मांग किया है, तो चलिए गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ।

जब तक मैंने समझा जीवन क्या है एन जीवन बोले बीत गया। और इस तरह से किशोर कुमार जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। एंड यू आर उजाला रेडियो आई बॉय।

तौबा, ये मतवाली चाल एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम और वीकेंड बैना वीकेंड यार और पवन भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने खुद मूर्ख चाय या तो कॉफी के साथ या तो खम्बर ते या तो आप बैठ करके ऑन बैठ करते होंगे तो स्वादी से ऑन बैठ कीजिए ना।

आई बोए होटो से झूल तुम और मेरा गीत अमर कर दो। इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, करीबन 18 मिनट बाकी रहा 11 बजे में, 18 मिनट फुटबॉल एलव आउटेक बाहर कितना मोई वेर, कितना मोई घाम निकल बा वेल लेकर वेर अच्छे वीकेंड एंड यू आर उजाला रेडियो आप लोग के साथ है।

अरे यार नजर ना मिला, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे और उजाला रेडियो का प्रोग्राम और कितना मिला शुरू करे से बनावे के पकावे है वेल geweldig eet smakelijk voor straks allemaal यार। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

धीरे धीरे कुमार शानू एंड देविका पंडित जी के अवांस में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और धीरे धीरे यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों। और देखा जाए तो करीबन 7 मिनट बाकी रहा 11 बजने में, और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में हम आप लोग सुनाने वाले एक और ऐसा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे।

वल तू मेरी जान बन गई, तू मेरी आदत बन गई। आओ इस तरह से गाना जी प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। एंड यू आर उजाला रेडियो, यार वीकेंड है। आई बॉय Yabal, I boy, here we go. You are Ujala Radio.

पर हमारे प्यारे सुनवल ठीक 11 बजने वाले हैं। वेल पारा मारी बहु का टॉप सिंगर ऑफ बैठेगा ना विशाल खेमाल।

युवाड़ उजाला रेडियो का प्रोग्राम करीबन 7 मिनट बैठे छज कल 11 बजकर सेफन मुनितन ऑफर एलो एट लास्ट एयर से खत्म हुई या वेल लास्ट घंटवा कितना हल्ली दोन आई सभी सुनने वालों को फाइन वीकेंड तो खबर हमारे तरफ से यार फाइन वीकेंड आप सभी को शुभ वीकेंड आप सभी को वीकेंड की जय हो मेरे अभी मोइबा Terus natulak weekend tu moy sek bani yar moy sek kati moy sek khaiye moy sek banaiye moy sek piye moy sek rahiye

Valyar, Akele Bazar to Jaya na Karo. आयुषारण से दीपक कन्हाई के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जमाल। एक नवा गाना सुन ले, और इस गाना को गाने वाले हैं विजय रामबरन।

देश नई शहर है, नई चाल है एंड जिंदगी है प्यार के। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने विजय रामबरन के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो है यार।

को प्यार बिना कोई कैसे गुजारे, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चुका है 11:20 बजकर 11 बैना बैना यार थोड़ा देर।

मनवा मोरे डोले रे इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रही थी। और देखा जाए दिमन शहर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मोर फौसिया ये गाना तुम्हारे नाम। आई बॉय

कल युवा उजाला रेडियो और हम आप लोग से बता चुके वीकेंड थे और वीकेंड पर हमें वेरवा भी मोई बात से लेकर वीर हेयर लक हेयर लक हेयर लक बड़ा मोई वेरवा बा यार एंड युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम है यार या

वाले मन चीर चीर और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुने वालों। और देखा जाए तो और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए और सौरभ अकर में हैंक गोपी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने। तो भाई हैंक गोपी आई बॉय

देखो यार भीड़ भाई भारी, भीड़ भाई भारी, देखो ये धनवा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए ये प्रोग्राम को भी बैठ करके सुने हैं और खास करके होफ दौरप में। आनंद मंगरू, हे खुद मोरखा।

रातों का राजा हूं मैं। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने राणा मताई जी की आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो है यार। 10 मिनट बाकी रहा 12 बजने में, 3 मिनट एंड 4:12। आई बॉय सुबह सुबह

0: बोले कोई ना जाने, बोले पैसा तो दे दे फिर चाहे जहां छू यार। वेल यू आर उजाला रेडियो, वीकेंड है यार।
1: हीरे मोती
0: और हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक है 6 मिनट बाकी रहा 12 बजने में।

हमारे प्यारे सुनने वालों, ठीक है 12 बजने वाले हैं। आप लोग से अब हम धीरे धीरे इजाजत भी चाहेंगे और यही आशा है कि आज का प्रोग्राम जो हमने बनाए सजाए आप सुनने वालों को पसंद भी आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आने वाले दिनों में फिर हम आप लोग से जरूर से मिलेंगे। आप लोग अपना वीकेंड मौज से बिताइयो, आप लोग मौज से रहियो, अपना आपको जरूर से ख्याल कीजिए। जो भी आप लोग करेंगे वीकेंड में, प्यार से दुलार से कर लेना, नहीं तो ना करिए यार। कोई से प्यार हो तो बोल दे यार कि हमें तुम्हें प्यार है, हमसे तुमसे मोहब्बत है, ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ेगा। हमारे प्यारे सुने बोलो, आप लोग मौज रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एन खुदा हाफिज। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिव गोविंद। बाय बाय, स्वाई स्वाई, फैन वीकेंड।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Formaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

जाना रेडियो सुनो लो, मैं हूँ लॉयड महावीर। बस प्रोग्राम को आप सुनते जाइए एंड फनाफंत फनाफ सेवन यू रात को 7 बजे हम फरमाइश लाने वाले भी और भी रिश्तेदार और के पास। दिस फनाफंत हम सेवन यू बैनिंग बाय यूरियो 6 बजे प्रोग्राम को हम आरंभ करेंगे एक बैनर फनाफ जिस तोत लगभग 3:30 तक। या dus vanavond ben ik vanaf 6 uur op Ujala Radio. Beetje programma qua afzondering naar Sunday Jana. Hele fijne dag. Fijn weekend. Shoef weekend. Avond heb ik op Beetje Kajan. Ujala Radio. Kijk vol team.

हैं बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आप फरमाइश और उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट कॉप मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो।

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलांग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया।

0: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया
1: चिरैया। ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो पर अब यहाँ से गीतों का सफर जो कभी खत्म नहीं होता शुरू है।

You are. उजाला रेडियो द नंबर वन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन एकदम विशाल geluid सबसे gezellige programmamakers खूबसूरत गीतों समाचार और बातचीत के साथ।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

ये है उजाला रेडियो सुनो लो और मैं हूँ लॉयड महावीरन हेल गुडनाफ्ट अलमाओ। युवा उजाला रेडियो के जरिए अब हम यहीं से थोड़ी देर में लाने वाले हैं आप लोग के फरमाइश और फरमाइश पढ़ा जाएगा अलमेरा के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद और के लिए पहली सालगिरह की खुशी के मौके पर अभी थोड़ी देर में फरमाइश हम लाने वाले हैं। राइस मोहम्मद रशीद ओरी सुनते रहे प्रोग्राम, सुनते ही जाना उजाला रेडियो का।

0: कि दिल न लगे किसी से। यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनवाला और उजाला रेडियो के जरिए एकदम ला रहे हैं फरमाइश जहाँ से हम पेश करने वाले हैं, और वो भी आज जबकि ये है शुक्रवार, और भी शुक्रवार 25 तारीख सितंबर, तो अलमीर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है। फंदा 1 साल geworden, van harte gefeliciteerd राइस मोहम्मद रशीद ओरी, सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखें, खुश रखें, तंदुरुस्त रखें, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से दूर रखें। राइस मोहम्मद रशीद ओरी फन हार्ट में थे ईर्ष्याडा।
1: देखो देखो
0: उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में सबसे पहला फरमाइश हम लाने को जा रहे हैं, और भी राइस मोहम्मद रशीद ओरी के वास्ते फंदाग 1 साल geworden, और इस मुबारक मौके पर नामस पापा शरीफ ओरी एंड मामा अलीशा ओरी आली बुक्स की तरफ से प्यारा प्यारा लाडला बेटा के लिए, लीव राइस फंदाग फिर जाए योर ईस्ट jaar met slingers, taart en heel veel liefde bij elkaar. Alhamdulillah, jij bent onze grootste zegen. Jouw lieve lach brengt zoveel geluk in ons leven. Mogen Allah je beschermen op al je wegen en je vullen met gezondheid, geluk en zegen. Op nog heel veel mooie jaren en verjaardagen, lieve Raïs. Wat zijn wij trots op jou vandaag en alle dagen. Allerliefste felicitaties toegewenst namens je papa en je mama. Papa Sharif Ori en mama Alicia Ori Ali Buskedrofse. Piara, piara, laadla betakle. Mubarak badi, aur dwaye kherkis.

अलमीर के रहने वाला रईस मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशी के मौके पर दादा रशीद ओरी और दादी रिया ओरी प्यार प्यारा पोता के लिए दो फुआ है शफीरा और शरीफा ओरी प्यार प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मुबारकबादी और दुआएं खैर के साथ अर्ज के प्रोग्राम में। रईस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशी के मौके पर लिव लिव मामा अलीशा ओरी आली बिक्स प्यार प्यारा लाडला बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार और मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

मेरे कहने वाला छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा राइज मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है। Vandaag 1 jaar geworden, Ori's Goesjik Malkeper, lieve, lieve mama, Alicia, Ori, Alibux, Apri, Piara, Piara, Beta, Klebri, Piar, Dular, Or, Mahabud, Mubarak, Matike, Zater, Erskeer. Almere Gerinwala, Raiz, Mohammed, Rashid, Ori, Kiaatje, Pehli, Salgre, Ori's Salgreke, Goesjik Malkeper, lieve, lieve papa, Sharif, Ori, Ketrefse, Piara, Piara, Beta, Klebri, Piar, Dular, मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें सुनिया

Almere के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरिकियाची पहली साल ग्रहण साल के खुशी के मौके पर लीफ लीफ पापा शरीफ ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत एंड मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज के प्रोग्राम में यू आर उजाला रेडियो ये है सुनो लो हर एक कामकाज के लिए स्टूर मेल ना info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Vermaak je jarige grijn. Almere keren hier wel een reis. Mohammed Rashid Orikiaj. Pahli salgrijn. Salgrijke. Goeie kemalke per. Piara piara dada hai. Sahab Rashid Ori. प्यारा प्यारा पोता के लिए बड़ी प्यार दुलार मुबारकबादी और दुआएं खैर के साथ अर्ज करें

अमेरिक के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह आज है। इस सालगिरह के खुशी के मौके पर दादी जान बीबी साहबा रिया ओरी प्यारा प्यारा पोता के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर और ढेर सारा प्यार के साथ अर्ज किया। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशी के मौके पर पापा शरीफ ओरी एंड मामा अलीशा ओरी आली बक्स प्यारा प्यारा लाडला लिव लिव बेटवा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

अलमीर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह है। इस मुबारक मौके पर लीफ लीफ पापा शरीफ ओरी एंड लीफ लीफ मामा अलीशा ओरी आली ब्रिक्स अपने प्यारे प्यारे बेटा के लिए बड़े प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी के साथ दुआए खैर के साथ अर्ज किए हैं। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से दूर रखे, आप हमेशा खुश रहे। राइज मोहम्मद रशीद ओरी सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह मुबारक हो। रिश्तेदार ओरी थोड़ी देर के लिए फरमाइश को हम रोक देते हैं ना द कमर्शियल ब्रेक। उजाला रेडियो के जरिए बाकी की फरमाइशें जारी किया जाएगा, जरूर आप सुन लेना। उजाला रेडियो के जरिए फरमाइशें देना सुनो, स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl। 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ यू आर उजाला रेडियो।

अलमीरा के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशक में मौके पर बहुत बहुत मुबारकबादी अर्ज किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि छोटी प्यारा सा नन्ना सा राइस मोहम्मद रशीद ओरी को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से दूर रखें।

जाना रेडियो के जरिए फरमाइशें जारी किया जा रहा है। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह छह सालगिरह के खुशी के मौके पर इस बैंड हम जो आप सुनने को जा रहे हैं, दादा रशीद ओरी और दादी रिया ओरी प्यारा प्यारा पोता के लिए, दो फुआ हैं शफीरा और शरीफा ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए, बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर को अलमीर के रहने वाला राइज मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह सालगिरह के खुशी के मौके पर दादा रशीद ओरी एंड दादी रिया ओरी प्यारा प्यारा पोता के लिए दो फुआ हैं शफीरा और शरीफा ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबादी के साथ दुआएं खैर के साथ अर्ज किए। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह आज है सालगिरह के खुशी के मौके पर नाना हिन ओरी प्यारा प्यारा पर नाती के लिए बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत दुआएं खैर मुबारकबादी के साथ अर्ज करें।

आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर को अल्मीर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी के पहली सालगिरह है। फंदाक एन यार खबर और इस खुशी के मौके पर नाना हिन ओरी की तरफ से पर नाती के लिए बड़ी प्यार दुलार और मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज किए। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह आज है। सालगिरह के खुशी के मौके पर दादा शहीद ओरी एंड पर दादी आलमा ओरी प्यारा प्यारा पर पोता के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

अमीर रहने वाला राइज मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर को है साल 2026 में, और इस खुशी के मौके पर मुबारक मौके पर लीफ पापा शरीफ ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत के साथ अर्ज के राइज मोहम्मद रशीद ओरी की आज पहली सालगिरह है, और इस सालगिरह के खुशी के मौके पर इस बार फरमाइश करने वाले हैं फुआ शफीरा एंड फुआ शरीफा ओरी प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ।

0: हुरे!
1: उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में नमाज आपने सुने ही इस पर फरमाइश लाए गए। सुन वालों, आज शुक्रवार 25 तारीख सितंबर है, तो आज बड़ी मुबारक का दिन है, जुमे का दिन है, खुशी का दिन है, मुबारक दिन है, क्योंकि आलमेर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह है। और इस सालगिरह के खुशी के मौके पर फरमाइश करे थे प्रोग्राम में फुआ शरीफा एंड शफीरा, शफीरा और शरीफा ओरी प्यारा प्यारा बेटा के वास्ते बड़ी प्यार दुलार और मुबारकबादी के साथ दुआएं खैर के साथ फरमाइश किए।

आमिर के रहने वाला राइज मोहम्मद रशीद तौरी की आज पहली सालगिरह है। सालगिरह के खुशी के मौके पर इस बार हमको फरमाइश करने वाला है पर नाना हिन ओरी पर नाती के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबादी के साथ अर्ज किया जा रहा है। दुआएं खैर अर्ज करते हुए फरमाइश की गई है

छः शुक्रवार 25 तारीख सितंबर आमेर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह है। फंदाक एन याद खबर खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश के प्रोग्राम में पर नाना हीन ओरी की तरफ से पर नाती के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ। राइस मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह 6 सालगिरह की खुशी के मौके पर नहमा को फरमाइश कर रहे हैं लीफ लीफ मामा लीफ लीफ मामा आलिशा ओरी आली बक्स प्यारा प्यारा लाडला बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज किया जा रहा है।

कश्मीर के रहने वाला राइस मोहम्मद रशीद और की आज पहली सालगिरह है और इस सालगिरह की खुशी के मौके पर लीफ लीफ मामा आलिशा और आली बख्श प्यारा प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज के प्रोग्राम में।

अलमीर के रहने वाला राइज मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह है। सालगिरह की खुशी के मौके पर अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से आपको दूर रखे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, सालगिरह मुबारक हो। रिश्तेदार ओरी, कमर्शियल ब्रेक के बाद और भी फरमाइशें हैं, जरूर सुन लेना। बाकी की फरमाइशें हम तीसरे भाग में पूरा करने वाले हैं। तमाम रिश्तेदार ओरी को हम फेलिसिटेट कर रहे हैं राइज मोहम्मद रशीद ओरी के पहली सालगिरह के खुशी के मौके पर। सुनते रहना प्रोग्राम, सुनते जाना जोमतेन और भी फरमाइश उजाला रेडियो पर। अगर आपको फरमाइश देना है स्टूडियो मेल ना info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio.

0: शोर। ये है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो के जरिए सुनने वाले प्रोग्राम में हम फरमाइशें को जारी कर रहे हैं।
1: किसकी है?
2: तेरी है।
0: आज किसकी पार्टी है? किसकी पार्टी है? आज है फरियादा फन राइस मोहम्मद रशीद ओरी का पहली सालगिरह। सालगिरह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस बार नवा जवाब सुनने गुजर है मांग के हैं पापा लीफ पापा शरीफ ओरी प्यारा प्यारा लाडला बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत और मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ।

आज है फरियारी, आज है सालगिरह, राइस मोहम्मद रशीद ओरी के पहली सालगिरह, सालगिरह के खुशी के मौके पर लीफ पापा शरीफ ओरी की तरफ से प्यार प्यारा बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहम्मद मुबारकबादी के साथ दुआएं खैर के साथ अर्ज किए। राइज मोहम्मद रशीद ओरी की पहली सालगिरह आज है सालगिरह के खुशी के मौके पर दादी रहाना ओरी जियाओ और दादा वही जियाओ प्यार प्यारा पोता के लिए दो फुआ शफीना और फाइजा जियाओ बेटा के लिए बड़ी प्यार दुलार मोहब्बत मुबारकबादी दुआएं खैर के साथ अर्ज करें।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: अरे नसल में घूमे, अरे हाय हाय, अरे बीबी की कैटलॉग को तुम, अरे मिट्टी के भाव जाके, अरे भेजाए, अरे क्या भेजाए भैया,
1: सोना,
0: अरे मिट्टी के

0: किए होते होते अपना ये हाल हुआ।
1: यानी सतीशवा के, अरुणवा के, या विजया के, या फिरसवा के ये हाल हुआ। अरे बिक गए सूत बूत तो क्या रहेगा भैया सतीश
2: चौकी।
1: अरे बिक

और दिल कभी हमको समझाता है और हम दिल को कभी समझाते हैं, ऐसा भी होता है। आप सुने फिल्म अकेले हम अकेले तुम का गीत, और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, कुमार सानू की आवाज और फिल्म परदेश का गीत, स्टेशन उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो दे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

उजाला रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंद नाउ। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए ऑनलाइन, उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर। जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।